वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

सदाशवारी गावन पुगनो इंदर इंदरासन बैठे देवतया अंदर नाले गावन पुगनो सद समाधि अंदर गावन पुगनो साध विचारी गावन पुगनो जति सती संतोखी गावन पुगनो वीर करारी गावन पुगनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन पुगनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पायाले गावन पुगनो रतन पाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन पुगनो जोध महाबल सूरा गावन पुगनो खाणी चारे गावन पुगनो खंड मंडल ब्रह्मण।

हिंडौत वंदन अंक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु ने नानक दे कर हथ हथ रखियो सिर ते ए मन खोटे दा कोई पता नहीं इन्हें कदों केड़े समय डोल जाना। तो कई बारी एदा हुंदा है अपना खून भी कई बारी जेड़ा है नाता वह भी टुट जाता है पर जे गुरु नाल प्रीत पाई है तोड़ निधे सेवक की ओढ़क निध ही प्रीत सेवक ते तोड़ नभाउंदा हुंदा ते जेड़ी प्रीति विच विचाले टुट जाए वह प्रीति कहदी होई सब नालों सच्ची प्रीति है वह सिख दी ते गुरु दी है। आपां इतिहास छोटे साहबजादियां दा शहीदी जो होई उहदे बारे थोड़ी विचार करनी अज अज लास्ट जवान है इंग्लैंड दा जदों पिछली बारी आपां इत्थे इकट्ठे होए सी ते आपां सारिआं ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वड्डे साहबजादियां दा शहीदी साका सी विचार कीती सी रल मिल के ते उदन संगतां ने इन्ना प्यार विखाया सी ते मैनू इन्नी खुशी सी ते दवान आपां रख लिया ते मार दी मेहर नाल अज फेर मिल गए कृपा हो गई मिलदे की महिमा वरन ना साको नानक परे परीला। तो सात संगत दुनिया विच बड़िया रिश्तेदारियां हन

आत्मा सज्जनों को कुटुंब सुत बांध बना भराता है। दादकियां दी गल कीती भाई गुरदास जी, रिश्तेदारियां ने ना, पिता है, दादा है, परदादा है, भरा ने, बच्चे ने, घरवाली है, ये सारिया जड़िया रिश्तेदारियां ने भाई साहब ने गनाईया ने, कहने इन्हां ते कोई नहीं ऐसा प्रीति, कोई नहीं ददसार, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा। सज्जन सज्जन जेड़े सज्जन वेली, सज्जन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है, ना भरा ना घरवाली ना बच्चे ना सज्जन मित्र जेड़े ने। अगलिया रिश्तेदारियां नानकियां दी गल कीती, पहला दादकियां दी फिर नानकियां दी। नहीं ननसार माता पर माता बिरद पर माता, मामू मामी मासी ओ मौसा बिबत बखियाता है। नानकियां विच एक मामा हुंदा है, मामियां हुंदियां ने, मासड़ हुंदे ने, मासियां हुंदियां ने, नानी हुंदी है, ये रिश्तेदारियां ने ना। ते भाई साहब कहिंदे ने ये जिहड़ी रिश्तेदारियां मां नूं शुरू होईयां ने, एक ते दादके पिता वल्लों, एक नानके मां वल्लों। ना माता ना पर माता ना बिरद पर माता, ना नानी ना मां ते ना पड़नानी। जिन्ने मामा मामी मासी मासड़ ये जिन्नियां भी रिश्तेदारियां ने, इन्हां दी भी गल कीती भाई साहब ने, इन्हां च भी कोई नहीं ससुरार। तीन थावां ते ज्यादा रिश्तेदारियां बनदियां ने, नानकियां ते दादकियां ते सहुरा परिवार जिहड़ा जिथे विआह होया होवे, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

पढ़या करो। जिस लागी पीर परम की तो जाना है जरिया, जान दई ने जिन्हा नू लगिया होन। गुरां दी प्रीत सारे जग नालो मिठी है, उन्हां नू की पता है जिन्हा ला के ना दिती। जिन्हा ने प्रीत पाई हुई नी ओ की जान सकदे ने। जिन्हा ने कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल प्यार ही नहीं कीता, ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब दे शहीदी दे जदों सतगुरां दे लालां दी शहीदी होई है उदों ओहदियां अखां च की पाणी आउणा। ओ ते ओदां ही चल रिहा कम, बिजनेस ते भी ओवें ही जांदा है, ओ ओवें ही नौकरी भी ओदां ही कर रिहा है, ओ छकदा छकाउंदा भी ओदां ही है, ठेके ते भी ओदां ही जा रिहा, ओहनूं कहदा दुख है। पर जिहड़े प्यार आले ने जदों तेरा पो आउंदा ना उहनां दियां अखां नहीं सुखदी। प्यारे हो, असी रोने भी अपने वास्ते, असी हसने भी अपने वास्ते आ, पर धन सन दशमेश पिता बाबा जेड़े कदे रोए भी साडे वास्ते।

आनंदपुर दूर रह गया ते सरहंद दियां टारियां नजर आ रही ने जिथे तुहाडे ते बड़े करड़े परचे पैणगे वेखो किते डोल ना जायो। साहबजादे नूं लजाया गया सूबा आया नौ पोह नूं चमकौर तो बड़ा थकिया होया बड़ा दुखी है भी घेरा भी पाया इन्नियां फौजां नूं भी लैके गए ते गुरु गोबिंद सिंह मार नूं अजी फेर नहीं फड़ सके। जदों वजीदा पहुंचया ते सरहंद आउण सार इहनूं खबर देती कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह दे माता जी ते साहबजादे गिरफ्तार करके लैके आए हैं चाह चढ़ गया कहिंदा गल बण गई। नौ नूं आया दस पोह नूं कहिंदे सूबे ने आराम किया ग्यारह पोह नूं कचहरी ला ली। वजीदे नूं पुछदे ने साहबजादियां नूं कैद किथे किया जाए वजीदा कहण लगा इंज करो भाई इन्हां साहबजादियां नूं ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ। ठंडा बुरज की सी जिहदियां बड़ियां मोटियां मोटियां कंधां ने वड्डियां वड्डियां ते वजीदे ने गर्मी वास्ते बनाया सी गर्मी गर्मी ओहदे विच कटदा सी क्योंकि उत्थे गर्मी विच भी ठंड लगदी जिथे गर्मी च ठंड लगती सी ओ विच उत्थे किन्नी सर्दी होनी ओहदे विच बंद कर दिओ। एक ठंडा बुरज एक साहबजादियां दी उम्र ने आनी ते दूजा कोल कोई गर्म कपड़ा भी नहीं तिजे पै ने कपड़े ठक्का चलदा ठंडी हवा चलदी है ठंडे बुरज विच साहबजादियां नूं कैद किया माता गुजर कौर जी दोनों बच्चियां नूं गोदी च लैके बैठी ते बार बार कहना साहबजादे ओ वेखना किते डोलना ना वेखो किते माता जी असीं नहीं डोलांगे जो मर्जी हो जाए। फिर माता जी ने इतिहास सुनाउणा तुहाडे दादे ने हिंदुआं दा धर्म बचाउण वास्ते अपने आप की कुरबानी दिती वेखो किते बापू की पग नूं दाग ना ला दे इन्हें नहीं माता जो मर्जी हो जाए माता की सिख्या सी बापू की पग नूं दाग ना लाए जे कोई अमृतधारी हो के भी विशियां वकारां विच पै रहेगा तो बापू की पग नूं दाग लगाउण वाले काम है। लोगों ने कहना वेखो सिख की करते फिरदे हो के सिख जे माड़े काम करदा फिरे थां थां ते ठोकरां खांदा फिरे ते गुरु की पग नूं दाग लाउण वाले काम है। एक मज लिबड़ी होवे फिर उह सारिआं नूं लबेड़ दिंदी पूछां मारन वास्ते ते सात संगत उस समय माता जी समझाउंदे ने लालो

गुर इह बुझायो प्रीत प्रभु सब केला तनासरी मोहल्ला पंजवा कर कृपा दियो मोहनामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा।

धन बासन दे कर गढ़ा गाडी रहाव। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे हो पीतर

अमृत बूथा शब्द लगो गुरमीठा जल थल महियल सर्ब निवासी नानक रमैया दीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन से होए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा।

दूर न होए त्रिपतानी, वे जो बीच हम तुम कश होते, तिनकी बात बिलानी, अलंकार मिल फैली होई है, ताते कनक वखानी, प्रगट्यो जोत सहज सुख सुबा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक निश्चल कर बांधियो, गुर कीओ बंधानी, तनासरी महला पंजवा, बड़े बड़े राजने अरपूमन, ताकि त्रिशन ना बूजी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कशु ना सूजी, बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई, ज्यो पावक ईंधन नहीं त्राप, बिन हर कहां अगाई रहाओ, दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटै ना भूखा,

दिन प्रत करह करह पछतापे, सोग लोभ महसूके, हर हर नाम अपार अमूला, अमृत एक नदाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना, तनासरी महला।

आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदया, ता कै चेतना बसा रहा, मौल्यो मन तन होयो।

तन्हा सर्ब थोक की, जिस है हमारी चेंद्र हाव, जां कै सिमरन सर्ब निदाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगनासी, भगत बांछ है सब चूरी, सर्ब मनोरथ जे को चाहे, सेवै एक निदाना, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सिमरत पार पराना, शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, एहो नानक कीनो चोला।

मुख आनंद राज पाई, मुख ते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत तृष्णा सब गुजी है, नानक त्रिपत अगाई, तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय, बिखै ब्याज तब हूटो रहाओ, नह सुनिए नह मुख ते बकिए, नह मोह ओह दीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कै लागे मीठी, माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ, हौ बलिहारी सतगुरे अपने, जिन एह चलत दिखाया, गूजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया, संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाटे, तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतपालो, हम बारिक तुमरे तारे, जिहवा एक कवन गुण कही है।

राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वरत तिलक इशनाना पुन दान बहुदैन कहूं न

ताप भ्रमण बसदा कर उर्द ताप लै गैन एह बिदलै पतियां नू ठाकर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोल कहर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ भेटे।

नाम सुनावे अस्त्र करे निकल इहो मनुआ बहोर ना कतहू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देव अर्पो अपनो चीत रहाव पर तन पर की निंदा इनस्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निदान दयाल पुरख प्रभ सर्व सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक ज्यो माता बाल गोपाला तना श्री महला पंजवां हर हर लीने संत उबार हर के दास की चितवे बुरे आई तित ही कौ फिर मार रहाउ जन का आप सहाई होआ निंदक भागे हार प्रमत प्रमत उहां ही मुए बहुड़ ग्रह ना मंजार नानक सरन पर्यो दुख भंजन

पंजवा फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते।

पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदारन सब कुल कारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

आओ साध की शोभा आत्मश कीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन हो वह एकत्र तह हर जस गा वह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

साध संगत होवत परगास, जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटह हर नाय, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जा कै मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए,

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रब देख कष्ट संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पौ जल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारी तनासरी महला पंजवा घर अठवा धुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवा

0: ही
1: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सतगुर गुरु अर्जन देव धन सतगुर पंजे पातशाह उन्हां सतारा ही भट्टां दे जो वेदां दे अवतार हन देहंता दूर करने वास्ते सारी सृष्टि वास्ते उपदेश दिंदे हन कि काची दे ते जेड़ा साडा शरीर है गुरमुख प्यारे ओ कच्चा भंड है इहनूं सुखमनी साहिब विच तुसीं सुणदे हो जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध तां होए काची पीत पीत नाम कंध दा नौवे पातशाह ने इहनूं राया रेते दी पीत बारू की पीत लिखिया भाई बारू बालू कहने रेते दा इह है कच्चा भांडा इसे नूं महाराज ने आख्या भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजे इतना धातु पांजर लाए कूड़ा पाजे ए कच्चा क्यों है गुरमुख प्यारे हो ए पांच तत्ता दी मिलके साडी दे बनी है पांच तत्त को तन रचे हो जानो चतर सुजान ए पंजा तत्ता नूं किते तुसी कल्ले ही बैठ के सोच लो एक तत्त मिट्टी है एक अग है एक हवा है एक आकाश है गुरसिख प्यारे हो ते एक पानी आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा ए पांच तत्त ने हुण इन्हां नूं जे आपां ही सोच लीए ते मिट्टी दे अग दा

खेल खेला खेल खेला न अंत को परे भव देव पे बिना जानी जे बेदर्ग देव रूप रंग न जात पात सो जानी के देव सात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जात मान ही प्रतीन लोक चौदह के विषय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय ताप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व विश्व रचियो सुजम पव कर्ण भंजन हार काल हीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म काम तो परम रहत पूजा लाख पेश अंग राग न रंग जाकर जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कान सत एक प्रुखम तूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत अंग ही न भंग नात्म एक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दयान पे सर्व सार सरना जाने।

ब्रह्म है, नीला नारायण है, तस्मिता जाता जाता ही चरपट छंद दर प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हरता सर्वंग करता, सर्वंग प्राणी सर्वंग प्राणी, सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग, सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद दर प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवंग प्रकाशे, नंगंग स्वरूपे अपंगंग भूते, परमाथंग परमाशे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते, नृसाधु श्रीगा मित्रो मी गाय, स्वयं प्रवाह जय जाय, भगवती शांत।

गई, गोल्ड के रंग को रंग से गुलत है, कौन के कौन को जात नवारी। भारी भजान के भूपली बद न्यावत शीस में जात विचारी, इत बाय तो काम पाए भूपत अंत को नंग ही पाए पदारे। जीत फिरा ऐ सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारी, गुंजत गुड़ भजान के सुंदर, हंसत है हजराज हजारी। भूत भवैख भगवान के भूपत है, कौन करे नहीं जात विचारी, सरी बस्तरी भगवान भजे बन अंत को अंत के धाम सुधारी। तीर्थन आन उदयदमदान, सुसंजम नेवा नेक वसेखा है, वेद पुराण कदेव पुराण, जमीन जवान सुवान के देखा है। पौन आहार जति जतार, सब शुभ चार हजार के देखा है, सरी भगवान भजे बन भूपत एक रति मन एक न लेखा है। शुद्ध सपाहा दुरंत सपाहा, संसार सुना दुर्जान दलेंगे, पारी गुमान भरे मन है कारू, पर्वत बंसा लेना लेंगे। तोर रीन मरोर मवासन, माध्यम दंगन मान मलाएंगे, सरी पद सरी भगवान कृपा बैनु, त्याग ध्यान दान चलाएंगे। वीर पार पटे पर आग, अवजार सार की तार मिशैया, तोर दे समलन वासन, मातृ जान के मान मलैया। गाड़ी गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं जग चार लवैया, साहिब श्री सब को शरण आए पौ, जाच अनेक सो एक दवैया। दान वदेव नंदन साचर, पूत वैख भगवान जपेंगे, जीव ते जल मैं थल मैं, बल ही पल मैं सब साफ सपाएंगे। पुन प्रतापन बाण जैत कौन, पापन के बा पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरा, जाके सत्र सवैव लोग जपाएंगे। मान इंद्र गजेंद्र नरातप, जौन तर लोग को राज करेंगे, कोट स्नान गजादिक दान, अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सरस्वती पद अंत पदेगम पाद भरेंगे, जे नार शरीर पद के बरसें पाद।

संत साजन तय सरसे पूरे गुर के ज्ञानी सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहर पूरे सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान।

कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ दसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ तनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ कपार कूड़ कूड़ कूड़ कूड़े में हो लगा दिखा करता किस लाल की क्या दोस्त।

ज्ञान का पता मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पढ़िया हो वै गुन है गा। ता उम्मीद साधन मारिए जह कल कहलना, तेरे हो नाव पचारिए।

मथा टिका पेट टिका खाए हाथरी जगत कसाए नील बस पैर प्रमाण मलेता ने तुझे प्राण अपाक्या का कुठा बकरा खाना चौंक।

महक तेरी बारिश दरबार मंगा जब देता खाही दीवान तो कर्म का हम आत्मा में दरलाए का पीड़ित नान का ज्यों से पड़

और चाकर लगे चाकरी से चल किसमें पाए अगली ना खाए खसमें करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गुआ अगला मुहिम पाना खाए जिदा जिता खावना पिछके ये सवा नारुक न चल रही।

मन मेरे दिन की ओट ले। ओ माई सोल सीक द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हू हैव नोन द ट्रू लॉर्ड, सरेंडर योर हार्ट बॉडी एंड सोल टू देम। द मैन हु रिकॉग्नाइजेस हिज लॉर्ड, दैट मैन इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स।

कब्र की मत तुले याने भगत बिना बहु डूबे सियाने। दिस इज द नेक्स्ट शब्द फ्रॉम सुखमनी साहिब। इट टीचेस अस टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन शोन बाय द गुरुज़।

ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर सह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निसंजनो

0: केवू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

लाल गुलाल गह बराओ सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हार जा कोई कह पाई भाई रे संत जना की रे नौ संत सभा गुर पाई मुक्त पदार्थ धेन रहाऊ ऊंचा उथान सुहावना ऊपर महल मुरारू सतकरणी दे पाई आए दार घारू महल प्यारू गुरमुख मन समझाई आए आत्म राम की प्यार त्रिविद कर्म कमाई आए आस अंदेसा होए क्यों गुरबिन त्रिकुटी सुख सी सहज मिलिया सुख होए निज घर महल पछाणी आए।

बिगड़ै रूप मरहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं इहा आस इहो आधार रहाओ, मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जोही नीच सुनात। काम क्रोध तन बसै चंडाल, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलुकी वेश, हौं ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुत